0: नगर कीर्तन जो मेरी पीरी दिस नूं समर्पित है गुरु घर विखे होवेगा उस उपलक्ष्य विच 16-17 जुलाई तो कथा दरबार कीर्तन दरबार ढाडी दरबार होणगे सो सारे समागमां विच वध तों वध हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करने गुरु घर विखे शाम नूं 7:30 तों 9 बजे तक हर रोज गुरबाणी शुद्ध पाठ वो समागम चलते हैं जिन्हां विच दमदमी टकसाल दे सिंह साहिबान विशेष तौर ते पहुंच के सेवावां निभाउंदे हन वध तों वध हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करिया करो जी गुरु घर दियां चलदियां कार सेवावां दे विच तन मन धन नाल सेवा करके लाहे प्राप्त करो जी गुरु घर विखे गुरबाणी की संथिया कीर्तन तबला पंजाबी गुरमुखी गतके की सिख्या दा अते सोहणियां दस्तारां दमाले सजाउण दा योग प्रबंध है वत वादे ना पुरालियां तो लाहे प्राप्त करिया करो जी आओ संगत जी हुण समा गुर इतिहास की लड़ीवार कथा विचार दा सेवा निभा रहे हैं बहुत ही सन्मान जो सिंह साहब ज्ञानी कुलदीप सिंह जी दमदमी टकसाल ज्ञानी राजविंदर सिंह जी उन्हां पासों सरवण करिए जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
1: सतनाम।

0: की फतेह। पतत पावन भगत वशल कृपा निदान रहमतां दे सागर गुरु गरीब निवाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन और पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सतगुरां दी अपार कृपा बख्शिश दा सदका सत संगत दियां अमोलक घड़ियां दी बख्शिश होई है गुरु के वजीरां पासों गुरु जस सुन करके समय और सवासा नूं सफलियां कर रहे हो संध्या वेले दे सजे होए दीवाना अंदर गुरु घर दी चल रही मर्यादा अनुसार लड़ीवार गुर इतिहास कथा विचार दा समा होया है। आप जिया ने कल दियां दीवाना अंदर इतिहास श्रवण कीता है चौथे गुरु नानक धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी जिस वेले गुरता गद्दी उपर सुभाए मान हो गए।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal reha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
0: Antariv arth karke das de ke jime ik raje kol takht hunda hai, sir de upar mukt hunda hai, shatar hunda hai, odiyan char prakar diyan saina hundiyan ne. एक रथ वाली सैना एक हाथियां वाली सैना एक पैदल सैना एक घोड़ियां वाली सैना ते फिर ओ किमें अपनी प्रजा दी रखिया करदा है किमें अपनी प्रजा नू सुख दिंदा है एदा ही धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी राजा स्वरूप ने सच्चे सतगुरां कोल जेड़ा संतोख दा तख्त है और महाराज जियां दे सिर दे उपर जेड़ा सच दा झंडा झुल रहा है महाराज जियां दे सीस दे उपर संगत जी मानो वाहेगुरु दी कृपा भरिया मुकट है आदिक महाराज जियां कोल शुभ गुणा दियां चार प्रकार दियां सैना ने ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी वर्गे भाई गुरदास जी हुणी आदिक जेड़े गुरसिख ने यह महाराज जिया दे वजीर हन और सच्चे सतगुरां दा जेड़ा सच्चा तख्त जदों सजदा है परजा दे रूप विच चारे दिशावां तों गुरु नानक नाम लेवा संगत चल के आउंदी है ते महाराज नाम दियां बख्शिशां करके फिर काम क्रोध लोह मोह हंकार वर्गे जेड़े दुश्मन ने जां पर रोग सोग चिंतावां आदिक द्वैष भावना वर्गे जेड़े आदि व्याधि उपाधि वर्गे रोग दुश्मन ने जिवें एक राजा अपने प्रजा दी रखिया करदा है इदां धन गुरु रामदास महाराज प्रजा रूप जेड़ी सिख संगत है उन्हां दी रखिया करदे ने और कवि जी आखदे के जिस दिन तों धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज गुरता गद्दी ते सुभाए मान होए ने उस दिन तों लै करके मानो औगणा दा ते काल ही पै गया है महाराज जिया ने औगणा रूपी जेड़ी खेती है ओ साड़ मकाई है वढ दित्ती है शब गुणा दे बीजा नू बीज दिता है और गुरु के सिख बहुता प्रसन्नता लैंदे ने फिर दसदे ने कि जिवें रात्री वेले करोड़ा तारे चढ़े आवण जिन्ना समा चंद्रमा नहीं आउंदा उन्ना समा रात सोहनी नहीं लगदी करोड़ा तारियां दे वांग सतसंगत दे विच तमाम गुरसिख बैठे ने और जिस वेले चौथे पातशाह धन गुरु रामदास महाराज जी संगतां विच आके विराजमान हो जांदे ने सत संगत नू चार चन लग जांदे ने सुंदर हो जांदी है जिवें संगत जी सच्चे सतगुरु जी जिवें सूरज चढ़दा है ते कवल दे फुल खिल जांदे ने एदा जिस वेले अमृत वेले दे सजे हुए दीवाना विच भगती सरूप धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज सूरज दे वांग चढ़ के आउंदे ने जिन्ना गुरसिखां दे मुख मुरझाए हुंदे ने जिवें कवल दा फुल खिलदा है एदा पातशाह दे दर्शन करके हिरदे रूपी कवल जिहड़े बहार विच आ जांदे ने खिल जांदे ने ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੌਥੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਆਓ ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਰੋਇਆ ਹੈ ਕਵੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ

Oh, ouais. सेव करो करुणा निध की जय सेवत चार पदार्थ पाईऐ नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सदैया लोक परलोक सभी सुधर हर भगत प्राप्त हुए ते आइया दास गोविंद सिंह फतेह सतगुरु की ऐसो छोड़ प्रभ अवर कित जाइया परम पूजे अकाल सर्वशक्तिमान बाणी के बोहित चबर शत्र दे मालिक हजूरे अनबर सरबरे कायनात शब्द गुरु धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज तिना दी हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यार वालियो आओ कुछ भी कहने तो पहला साहिबान की बख्शिश की हुई फतेह और वाहेगुरु गुरमंत्र का जाप करते हैं। करो बेनती प्रवान अदब सहित आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह महाराज दियां दी कृपा दे नाल संध्या दे दीवान सजे सजे हुए दीवाना दे अंदर सोधा

ना इहो रंग लह न जाय रहाउ। हम नीच मैले आत अभिमानी, दूजे पाय विकार। गुर पारस मिले कंचन होए, निर्मल

0: से रह जैसे पास ढोर जिन कीते तिसै न जाननी बिन नावै सब चोर एक गुण विहाजह औगुण विकणह गुर कै सहज सुभाय।
1: विकणह पाठ भी कस के करना विकणह पोला जिहा नहीं करना जिवें उचारण कीता गया है। एक गुण विहाजह औगुण विकणह गुर कै सहज सुभाय।

भर विच प्रचार दे तीन माध्यम मने गए ने, कीर्तन, कथा और ढाडी प्रसंग। कीर्तन बंदगी है, कथा गुरबाणी दी विचार है और ढाडी प्रसंग इतिहास की रूपरेखा दा चित्रण है। मेरा स्वभाव कुदरत ने और गुरु दी बख्शिश द्वारा गुरबाणी विचार दा बने है कि ए विचार समूह घरां विच और दूर दूर तक लोकां नूं सुनाई दें तां उन्हां दी प्रेरणा नाल मैं एक कैसेट टेप रिकॉर्ड कराए ने जो पंज हैं जिन्हां विच वख वख गुरबाणी दे मजमून ने अलग अलग विषय ने और इन्हां पंज कैसेट दे विच मैं गुरबाणी दी जेड़ियां जरूरियां विचारां सन गुरु दी बख्शिश द्वारा संगतां दे सामने पेश कीतियां ने। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरुप्रसाद सर्वशीलं ममं शीलं सर्वपावने मम पावनं।

0: परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी प्रकृति दे जीवन विच एक अटल नियम रखे है। हर जीवन नो तीन पड़ावां दे चों लंघना पैंदा है। चाहे वो पत्थरां दा जीवन है, चाहे बनस्पति, चाहे वो पशुआं दा जीवन है, चाहे पंछियां दा, चाहे वो मनुखां दा जीवन है। क्योंकि इस प्राकृतिक मंडल विच मनुख जीवन दी शिखर है, जिंदगी दी बुलंदी है। इसनों धरती दा सरदार आख्या है गुरु नानक देव जी महाराज ने। अवर जौन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। इसनों अशरफुल मखलूकात आख्या है। अगर जीवन नू ना पांगे तो फिर इस प्राकृतिक मंडल विच मनुख तो सब कुछ थल्ले ही है, पिछे ही है। पिछे लई शब्द है संस्कृत देच पाश, जो पिछे रह गए, पाश देच रह गए पशु। कौन पशु? जो पाश देच रह गए, पिछे रह गए। तो मनुख तो पिछे है सारा पशु जगत, और इस पाश जगत देच, इस पशु जगत देच चौपाए जानवर आ जाते ने, पंछी आ जाते ने, वनस्पति आ जाती है, हथा कि कुछ जड़ जीवन पत्थर भी आ जाते ने। क्योंकि गुरबाणी ने इन्हां नूं भी यौन मनिया। कई जन्म सैल गिर करिया, कई जन्म गर्भ में खिरिया। अनंत जन्मां तक, अनंत काल तक ऐ मनुख तू पत्थर भी रहे, तो पत्थर दी जिंदगी भी पौगी है। अचेत सुन, तो जितना इस पृथ्वी दे जीवन है मनुख तो पिछांदा या मनुख, ये तीन तरह दे पड़ाव तो लंघदा है। और इन्हां तीन पड़ावां नूं नाम दिता गया है बाल अवस्था, फिर जवान अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। चाहे वनस्पति है, चाहे पशु ने, चाहे पक्षी ने, चाहे मनुख ने, इन्हां ते झात मारांगे दिस पैणगे कुछ ऐसे जो बिरध ने, तर्जे जिंदगी दसेगी बिरध ने, तर्जे जिंदगी दस देगी युवक ने, जवान ने, आकार विचार ही दस देंगे बच्चा है, बालक है। ये बचपना जवानी बुढ़ेपा सिर्फ मनुखी ही तलते ही नहीं, पंछियां देच भी ने, पशुआं देच भी ने, पक्षियां देच भी ने, और पत्थरां देच भी ने। ऐसे पहाड़ ने बुढ़े हो गए, जैसे सतपुड़े नु कहंदे ने बिरध हो गया। ऐसे भी पहाड़ ने जो जवान ने, जैसे कि हिमालया। पर ऐसे भी टीले अजे खड़े ने, उसर रहे ने, उच्चे हो रहे ने, जिन्हां नु कह के देख के ये आखना पैंदा है इते बच्चे ने। कुछ अजे प्रकृति दे गर्भ दे च भी ने, उभरणगे, समा लगेगा। लेकिन गल ते अशरफुल मखलूकात मनुख दी है, जो धरती दा सरदार है। गल ते इस दी करनी है, यही एक जीव है जो एक तरह दी जिंदगी नहीं जीवदा, कई तरह दा जीवन जीवदा है। इसका सामाजिक जीवन है, इसका कुछ राजनैतिक जीवन है, इसका कुछ अध्यात्मिक जीवन है। पूर्ण पुरुख उसनों कहंदे ने जो सामाजिक तल ते पूरा है, राजनैतिक तल ते पूरा है, धार्मिक तल ते पूरा है। बड़ा सोहना शब्द है गुरबाणी का, पूर्ण पुरुख, मुकम्मल इंसान, पूरन पुरख वो पूरा है जिसका समाजिक जीवन पूरा है, वो पूरा है जिसकी राजनीतिक सोचनी पूरी है, वो पूरन है जो धार्मिक तल से पूरा है। ये असी किस तरह नापांगे कि इना जिंदगी दे भी, इस तरह की जिंदगी दे भी समाज राजनीति ते धर्म दे भी बचपना है, जवानी है, वृद्धावस्था है, बुजुर्गी है। शरीरक बचपना अखां नाल देखिया जांदा है, समाजिक बचपना देखना है तो दिमाग नाल देखना पड़ेगा, अंदर दी अख नाल देखना पड़ेगा। शरीरक जवानी देखनी है अखां नाल दिखाई दे जांदी है, जवान है, पर किसी दा राजनैतिक तल ते बालग होना देखना है तो फिर अंदर दी अख चाहिदी है, अंदर दी सोच चाहिदी है। कोई धार्मिक तल ते पूरा है इते वेखण वास्ते पूरी अख चाहिदी है अंदर दी, पर कोई शरीरक तल ते बुजुर्ग है, पूरा है, बुढ़ा हो गया इते अखां दा विषय है, अखां ही दस देंदियां ने ये बुढ़ा है, लेकिन अख ए नहीं दस सकती कि धार्मिक तल ते किथे खड़ा है, अख ए भी नहीं दस सकती कि समाजिक तल ते किथे खड़ा है, अखां ए भी दसण दे असमर्थ ने कि ए राजनीतिक तल ते किथे खड़ा है, किथे अंदर दी अग खोलनी पेगी। पर अक्सर एक बदकिस्मती रहिंदी है, अंदर दी अख अक्सर मनुखां दी बंदी रहिंदी है, बाहर दी अखां ए दो ने, अंदर दी अख वो एक है, और वो मनुख दे अंतिशकरण नूं वेख सकदी है, वो प्रकृति दे अंदर झाती मार सकदी है, वो अख बहुत गहरा वेख सकदी है, ये अखां इतनियां गहराई तक नहीं जा सकदियां। पर देखण दे चाहुंदा है एक दिन ये दो अखां भी हमेशा लई बंद हो गईयां, वो अख खुली ना, दोहे दिवे बदनियां, मलक बहठा आए गढ़ लीता घट लुटेया, दीवड़े गया बुझाए। बाबा फरीद कहंदे ने आया एक दिन मौत दा मलक अपने नाल ऐसा तूफान ले आया, दो अखियां दे दीवे बुझा गया। मैं ते कोशिश करदा रहा अंदर दे दीवे च तेल पाण दी, वट लब्बण दी, जलाण दी कोशिश करदा रहा, ओ ते जल ना सकया, ए दो बुझ गए। जीवन अंधकारमई हो गया, जीवन मसिया दी रात बन के रह गया, जदकि जिंदगी मिली सी नूर होण लई, प्रकाश होण लई, चानण होण लई, इते अंधकार बन के रह गए। ओ जद तीसरी अख खुल जाए तो ऐसे पुरुष नु कह दिता जांदा है त्रैनैनं, तीन नेत्रां वाला, त्रिलोचन, लोचन अखां नु कहंदे ने, त्रिलोचन इहदे कोल तीन नेत्र ने, इहदे कोल तीन अखां ने। अक्सर हर मनुख नु असीं कह सकदे हां दोए लोचन, दोए लोचन, त्रिलोचन जो हो गया उते संत है, उते भगत है, उते धार्मिक तल ते बुजुर्ग है। त्रिलोचन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 24 अवतारां दी कथा दे शिवजी नूं कहिंदे ने त्रैनैनं, बरी पुत्र का ताहे को प्यो त्रैनैनं, ये तीन नेत्रां वाला कहिंदे ने, ये दो अखां खुलियां संसार दा असली रूप दिखाई देंदा है, किसे किसे नूं दिखाई देंदा है, अजे बच्चे नूं नहीं दिखाई देंदा, नवे बच्चे जन्मे नूं ते मां भी नहीं दिखाई देंदी, उन्हूं कोई पता नहीं मां है, सामने प्यो खड़ा है उसनु कोई बोध नहीं है मेरा पिता है। सामने बहन खड़ी है इसनु कोई ज्ञान नहीं है मेरी बहन है ये मेरा भरा है। अजे अखा इसदिया दो खुलन गया सहजे सहजे खुलन गया सहजे सहजे संसार की असलियत प्रगट होवेगी। पर जिस दिन तीसरा नेत्र खुलता है संसार भस्म हो जाता है निरंकार प्रगट हो जाता है। ये एक मिथ है कि शिव जी जब अपना तीसरा नेत्र खोलता सी जो कुछ सामने सी भस्म हो जाता सी। वाकई भस्म हो जाता सी संसार निरंकार का रूप दिखाई देने लग पैंदा सी संसार खत्म हो गया निरंकार प्रगट हो गया। ये तीसरा नेत्र संसार नु भस्म कर देंदा है निरंकार नु प्रगट कर देंदा है। जिस भी किसी का खुल जाए त्रिलोचन तीन नेत्रा वाला मनुख दे अंतिशकरण दे प्यास ते है ए अख मेरी खुले। इस वास्ते बहुत सारे लोग ते अपना नाम भी यही रखांदे ने मां बाप अपने बच्चियां दा नाम रख देंदे ने त्रिलोचन। तीन नेत्रा वाला भावे अजे दो अखां भी ढंग दियां नहीं खुलियां अजे संसार नूं भी देखण विच ए असमर्थ है लेकिन त्रिलोचन त्रिलोचन धर्म दी दुनिया विच एक शिखरमई अवस्था है। तीसरा नेत्र खुल गया तो खैर जैसे शारीरिक तल्ला बचपना है जवानी है वृद्धावस्था है कोई सामाजिक तल ते भी बच्चा हो सकता है उसके रिश्तियां विच पुख्तगी नहीं होवेगी उसके संबंधा विच पक्याई नहीं होवेगी। बच्चा खिडौणिया नाल खेडदा है तोड़दा है समाजिक तल ते जो अजे बच्चा है सवेरे संबंध जोड़दा है शामी तोड़दा है शामी जोड़दा है सवेरे तोड़दा है। रिश्ते बनदे ने टुटदे ने बनदे ने टुटदे ने मिट्टी दे घर बनाना फिर मिटाना बच्चियां दा कम बनाना मिटाना खेड संबंध जोड़ने ने तोड़ने ने ये समाजिक तल्ला बचपना है। सवेरे रिश्ते जोड़े ने शाम नु तोड़ देते ने शाम नु जोड़े है सवेरे तोड़ देता है। तो किधरे किधरे कौमी पद्धर ते देश पद्धर ते भी समाजिक बचपना दिखाई देता है किधरे किधरे राजनैतिक बचपना राजनीति भी सारी इसे आधार ते खड़ी तोड़ फोड़ ते ए जोड़िया ओ तोड़िया ए जोड़िया। इस जोड़ तोड़ ते जिस मनुख दी राजनीति खड़ी है तो एक गल स्पष्ट हो गई कि राजनैतिक बचपना है। धार्मिक बचपना जो धर्म नहीं है उसनु ही धर्म समझ लेना। गुड्डी गुड्डे दा व्याह कर दे पैने बच्चे व्यर्थ ये व्याह खेल हो सकता है। जो अजे धार्मिक तल ते बचपना बचपन दे दौर चो लंघ रहे है उदे सारे कर्म खिडौणिया तो ज्यादा कुछ भी नहीं होंगे और खिडौने भी गुड्डे ते गुड्डे दे। भगत कबीर कहंदे ने माथे ते लख हथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना। अगर राम खिलौना है तो खिलौनिया नाल बच्चे ही खेड देने। जो धार्मिक तल ते बच्चा है राम खिलौना है। राम कोई वास्तविकता नहीं है राम कोई सच्चाई नहीं है राम कोई हकीकत नहीं है खिलौना खेडना है। मन दा परचावा सिर्फ मन दा परचावा जैसे बच्चा खिडौणिया नाल खेड रहा है मन दा परचावा इस जरा शरीरक तल ते वड्डा हो गया इस दे परचावे जरा वड्डे ने इदियां ख्वाहिशां जरा वड्डियां ने। तो खिडौना भी बहुत वड्डा चाहिदा है और मामूली खिडौना नहीं राम दा खिडौना चाहिदा है ईश्वर खिडौना चाहिदा है ताए खेडे क्योंकि ख्वाहिशां बहुत वड्डियां कामनावां बहुत वड्डियां वासना बड़ी अपार तो खिडौना भी कोई बहुत वड्डा चाहिदा है। तो राम खिडौना है खेडना है। ये तीन तरह की जिंदगी रेच तीन तरह के पड़ाव मिलते ने बचपना जवानी वृद्धावस्था समाजिक जीवन विच राजनीतिक जीवन विच धार्मिक जीवन विच चूंकि गल करिए धर्म दी ते धर्म ही एक ऐसा विषय है जिन्हों समझ लिए ते सब कुछ समझ लिया जिन्हों नहीं समझिया ते कुछ भी नहीं समझिया। महाराज दी बाणी दा फरमान बड़ा सुंदर सोई अजान कहे मैं जानिया जानन हार न छाना रे। धर्म नू जानिया नहीं परमात्मा नू जानिया नहीं जानकारी बहुत कठी कीती है और कहिंदा मैं ए जानदा पर सेकंड तू कुछ भी नहीं जानदा अनजान है। की होया तू वनस्पति शास्त्री बन गया की होया जे तू अर्थशास्त्री बन गया की होया जे तेनू शरीर दी कोई समझ पै गई है वैद बन गया की होया जे तेनू कोई थोड़ा जा फिलसफा घोटना आंदा है अजे जीवन दी मूल सता दा तेनू कोई बोध नहीं अनजान। बहुत सारियां दा ज्ञान अनजानपणे दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। इस नूं इंज कहिए बहुत सारियां दा महान ज्ञान महान अज्ञान ते खड़ा होंदा है। आधारशिला अज्ञान है उपर ज्ञान खड़ा कीता है तो वह सारी जानकारी बेमैनी हो जाती है जितने चिर तक धर्म का ज्ञान ना होवे। कहिंदे ने एथेन दा प्रसिद्ध संत सुकरात बच्चियां नाल खेड़दा खेड़दा बचपन दियां गल्लां अक्सर कहिंदा सी ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं जानदा मैं सब कुछ जानदा मैनू सब कुछ बोध है मैनू सब कुछ दा पता है। पर सुकरात कहिंदे ने जद मैं जवान होया तो छोटे होंदे आ बच्चियां जो मैं बोल बोलदा सी ओ बोल जद मेरे सामने आंदे सन तो शर्म नाल अखां झुक जांदियां सन। मैनू जवानां दी महफिल विच बैठ के कहना पिया कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानदा। और यही महापुरुष कहिंदा अज मैं बुढ़ा हो गया एक गल मैं दावे नाल कहना और सही ते सच्ची मैं कुछ भी नहीं जानता मैनू कुछ भी नहीं पता। जिस जिस नूं भी मैं ज्ञान आख्या उते अज्ञान साबित होया। धर्म नूं जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया प्रभु नूं जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया। सारी जानकारी रेत दा ढेर साबित हो जाती है अगर परमात्मा नूं नहीं जानिया ईश्वर नूं नहीं जानिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने धर्म दियां इस अवस्थावां नूं जिस ढंग नाल खोलिया है ओह मैं उन्हां दे शब्द दी विचार नूं पेश कर रहा। भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गर्त परत गह लेहो अंगुरिया सर्वन न सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने हे प्रभु है ते सही मेरे कोल धार्मिक जीवन पर ए जीवन ऐसा है जैसे किसे मां दी गोद विच उसका बच्चा एक मासूम बच्चा और उस बच्चे नो ए भी नहीं पता है मेरी मां है जिसने मेनू गोद विच लिया है अज जमे है एक दिन दा है दस दिन दा है पंद्रह दिन दा है बैठा ते मां दी गोद विच है सो रहा है मां दी गोद विच लेकिन गोदी दा कोई ज्ञान नहीं कुख दा कोई ज्ञान नहीं पिला रही है रिजक दे रही है दुध मां पर रोजी देहिंद दा इसनु कोई बोध नहीं है परचा रही है खिड़ा रही है अपने हथा नाल पर ए हथ की ने कुछ भी ज्ञान नहीं कुछ भी बोध नहीं। अगर इस हिसाब नाल देखिए बहुत सारियां नूं कोई बोध नहीं असी कित्थे आ किस दे हथां दे चा ਕਿਸ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਚਾ ਇਤਨਾ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਬੁੱਧ ਅਚੇਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਪਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਨਮ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ? ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਖਿਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਅਚੇਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਵੀ ਅਚੇਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਅਚੇਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਚੇਤ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਪਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੋਝ ਸਮਝ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਪਰੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਏਥਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਉਸਦੇ ਪੋਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਅਮਰ ਬੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਕਤੀ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਕਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਮਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੁਰਦਮੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਦੀਵੀ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਤਲ ਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀਵਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਮੰਦਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਤਰਫ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਸਰੀਰਕ, ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਸਮਾਜਕ, ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਰਾਜਨੈਤਿਕ, ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਜਨਮ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਮ ਲੇਕਿਨ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਨਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪਿਓ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਚੇਤ, ਅਜੇ ਨਵਜਾਇਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਅੰਧਾ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੈਣ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਗਲਤ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਅਨਾਚਾਰ ਉਹ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਬਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਕਈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਤੇ ਅੰਧੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਅੰਧੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਅਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਏ, ਅੰਧੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਖਸਮੋ ਕੋ ਥੇ ਜਾਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਰਦਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਲਕ, ਅਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलता, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई ता दुखी है। जे औलाद है ता हुकम विच नहीं है वो ता दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

पौड़े बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उन कर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की दिशन तो खी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

0: दीपालो हां मंडला खंडा बिरपंडहा अंडू जेर जुट पजा खानी सेक जा सोमत जाने नानका सारा मेरा जनता नाग जंतु पाए कैसा माले सबनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी ताहा सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वर तिस तिस दीपान पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग
1: महला पहला लख ने खेन चंगी आया लख पुना प्रवाण लख तप उपर तीर्था सहज जोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण में है छुट्टे हे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान

बौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया।

0: तुवा पुरा तपे का सत गिर तुवा हो कलजुगरा थगन का कूड़ा गैर तुवा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में ऐसा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमलकिया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप अब्द करनी।

पौड़ सतगुरु बठों वारिया जित मिले खसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहता।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया, सबको आखे पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत, डर के अंदर पाइए तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी, फलके थुक पवे निदारी। तग न प्यारी तग न हथी, तग न जेवा तग न अखी। वे तग आया पे बते।

ओडिशा महोदय कृपा करता सहायकार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

आपे भांडे साजन आपे पूरन दे इक नी दुद्ध समाई एक चुल्ले बैं चढ़े इक ने हाली पैस वाली कुपुरान खड़े तिना सुवारे ना।

श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार हिसार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन मत गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हर सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाच कनेक सो एक दवैया दानव देव फनेंदन साचर भूत।

श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।

एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एहो तिनका मन वस्या जिन धुर हो लिखिया आया एक फिर कनेरे कर गल्ला गली किने न पाया कह नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हार त्याया हार त्याया पवित गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहत सो पवित संगत सबाइया।

फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुन आए कह नानक विचार देखो विण सत गुर मुक्त न पाए आवश्यक सत

प्यास न जाय होरत किते जिचर हर रस पलै न पाए हर रस पाए पलै पिया हर रस बहुत न तृष्णा लागया है एहो हर रस करमी पाई है सतगुर मिलै जस आए कह नानक होरा न रस सब भी।

अरूप है। ये नेत्र हो मेरे हर तुम ज्योत तरी हर बिना वरना देखो, कोई हर बिना वरना देखो, कोई नदरी हर निहालिया, यो वैसे

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कोमो की पेशेंस का टेस्ट, पेशेंस

कितने तरह के साजां की आवाज प्राचीन काल विच साजां के जन्मदाते भगत लोग होए ने उन्होंने के धुना सी अंदर सुनते पाया उन्होंने बार प्रगट करने की कोशिश की वाजे नाल अनेक असंता केते वावन हारे केते राग परिसव कहीं केते गावन हारे पहले ते वाहेगुरु आखण का स्वाद आ रहा सी पर हुण अनाहद नाल सुन लग संगीत छड़ गए राग छड़ गए हिरदा बड़ा उसका आनंदित हो जाए अनाहद नाल सुन लग पे हुण एक कदम की यात्रा होर रह गई है ये धुन वापस जो मधमा पसंती बनी है हुण फिर परा बने नाभी नाल टकरावे धुनी नाल टकरावे जप जारी रहे ते ध्यान दी एकाग्रता बनी रहे ते जैसे धुन वाहिगुरु दी राम दी अल्लाह हर धुन दा अपना प्रताप है जैसे नाभी नाल टकराने पहले पमन दे टकराने नाभ खोली से हुण धुन दे टकराने नाभ पूरी खुल जाए धुन जो धुनी तो उठी से कन्ना दे राही वापस आई मधमा पसंती बन के जैसी फिर धुनी नाल टकराती है परा बन दिए नाभ पूरी खुल जाती है तन ते जिंदा रहिंदा मन दी मौत जैसे धुन धुनी नाल टकराती है मन दी मौत हो जाती है तन ते जिंदा ऐसा मनुख परमात्मा दे तल ते जींदा है पर जैसे मन की मौत आती है कई भगत ऐलानिया कह उठते हैं जैसे कबीर कहते हैं सच भयो अन कते न जाय मैं सच हो गया मैं परमात्मा का रूप हो गया अब तो जाय चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा एक वे हैं कोय न सके पछाने इस अवस्था ते पहुंचे होया ब्रह्म ज्ञानी गुरमुख वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा नहीं बल्कि एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुत जनपना जिमें प्राण चलते ने वाहिगुरु की धुन उसके प्राण च तो वाहिगुरु का रूप हो जाता है ईश्वर का रूप हो जाता है तो वाहिगुरु का रूप ईश्वर का रूप हो जाता है

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
3: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
2: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।

इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौनिध पाई। जन्म तो ही मनुख खोजी बिरतियां लेके आया है, खोज रहा है जन्म।

जन्म दर जन्म एक खोज रहे है, लब रहे है, तलाश कर रहे है। खोज खोज के जो मिले है उस तो तृप्ति नहीं, तृप्ति किवें होनी है इसका कोई पता भी नहीं। धार्मिक चिंतक ते ऐसा कहते ने कि मनुख तृप्ति दी ही तलाश दे चाहे और तृप्ति तो बिना इसनों होर कुछ भी नहीं चाहिदा। रजेवा चाहिदा, तृप्ति चाहिदी है और रजे होए नु ही राजा कहंदे ने। ए राजा होना चाहंदा है, ए राजा बनना चाहंदा है, ए महाराजा बनना चाहंदा है। खोज है, तलाश है महाराजा होण दी, राजा होण दी। खोज दे आज तक जो मनुख ने आधार बनाए ने वो है जमीन, पहाड़, सागर ते आसमान। अनंत काल तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म दर जन्म मनुख धरती दी गोद विचों अन्न कढ रहे है, धन कढ रहे है और लंबे समय तो इस दी कोख विचों बहुत कुछ मनुख प्राप्त कर रहे है, प्राप्त करदा आया है। पर जमीन इसनू राजा नहीं बना सकी, महाराजा नहीं बना सकी। भावे जमीन देते रहने वाले जमीन मल के राजा होण दा दावा कर दे रहे, महाराजा होण दा ढंडोरा पिट दे रहे, पर किथे हो राजे सन। कहिंदे ने सिकंदर ने अंतिम समय अपने साथियां नू कहा सी कफन चो मेरे हथ बाहर ही कढ़ने, ताकि जगत नू पता चले थोड़े हथ ही खाली नहीं, मेरे हथ भी खाली ने। तुसी ही सिर्फ खाली नहीं लौट दे ते खाली रहंदे, मैं भी खाली रहा और खाली वापस हो रहा। नहीं भर सकया, नहीं त्रिपत हो सकया, नहीं राजा बन सकया, नहीं महाराजा बन सकया। एक गल वखरी है कि सदियां तो मनुख राजा महाराजा दा लेबल अपने उपर लांदे रहने, ए राजा है, ए महाराजा है, ए बादशाह है, पर सीने चीर के देखिए सिवाय कंगालता तो होर कुछ नहीं, सिवाय भुखमरी तो होर कुछ भी नहीं। तो जमीन मनुख दी झोली नहीं भर सकी, राजा नहीं बना सकी। भावे जमीना ते रहन वाले, धरती ते रहन वाले राजा महाराजा होण दा दावा करदे रहे। फिर मनुख दियां निगाहां पहाड़ां ते चलियां गईयां। इसने पहाड़ां दे सीने चीरे बहुत कुछ लभया है, लोहा लभया, तांबा लभया, कोयला लभया और इसे ही पहाड़ां दी कुख दे चों इसनू सोना लभया, चांदी लभया, हीरे लभे, तरह तरह दे रतन लभे। इसने अपने घर भणे, इसने अपना तन सोने दे गहनियां नाल सजाया संवारिया। इसने हीरे अपने ताज दे जड़त कीते और इसने लोहे नू, इसने तांबे नू जस्त, इस तरह दी होर मैदनियात नू अपनी जरूरी कम्मां दे चलाया। लेकिन फिर भी कंगाल दा कंगाल रह गया। धरती दे इतने वड्डे पहाड़ एक छोटे जिया मनुख नू रजा नहीं सके, त्रिपत नहीं कर सके। फिर मनुख दी निगाहां सागर वल दौड़ियां और उसने सागर दे पानी नू छाणिया, चप्पे चप्पे नू छाणिया। बड़ा कुछ इसनू सागर तो भी मिलिया और मिल रहा है, लेकिन झोली फिर भी खाली, फिर भी ये त्रिपत नहीं हो सकया। फिर भी ये अपने आप नू कहिंदा ते रहा मैं राजा, मैं महाराजा, पर नहीं। तीन हिस्से पानी है, एक हिस्सा धरती है। इतना वड्डा सागर भी मनुख नू राजा नहीं बना सकया। निगाहां आसमान ते चलियां गईयां, चंद्रमा ते, होर ग्रह नक्षत्रां ते।
शायद इत्थों कुछ लबे और मेरी झोली भरे। लेकिन चंद्रमा तो भी मनुख मुट्ठी भर रेत लेके ही वापस आया है, झोली खाली है, निगाहां होर अगां तो अगां जा रही ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा फरमान है, ए बंदे जे तेनू धरती तृप्त नहीं कर सकी, तेनू पहाड़ नहीं रजा सके, तेरी प्यास सागर नहीं बुझा सके और ग्रह नक्षत्र भी तेनू महाराजा नहीं बना सके, तो कम से कम तू इस अनुभव तो लाभ उठा। बार जितनी भी खोज करेगा तेरी लोड़ा दी पूर्ति होवेगी, तू राजा नहीं हो सकेगा, महाराजा नहीं हो सकेगा, फिर किथे खोज करिए। तो सतगुरु दी वाणी कहंदी है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निंद पाई। भगत कबीर भी फरमान करदे ने, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माए, ए जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाए। ऐ बंदे जमीन ते तू खोजी, पहाड़ सागर आसमान ते तू खोजे है, पर हुण अपने दिल दी खोज कर, अपने मन दिच जाती मार। पहाड़ां दी खोज लई बार मुखी होना पैंदा है, धरती दा सीना चीरन लई बार मुखी होन पैंदा है, सागर दी कुख दे चों मोती कढ़न लई बार मुखी होना पैंदा है, पर अपने ही जीवन दे मन दे अंदर जात मार के रब्बी खजाना कढ़ना, इदे लई अंतरमुखी होना पैंदा है। ध्यान नू अंतरमुखी करना है, जो बार जा रहा सी उनू अंदर लेना है। बंदे खोज देर हर रोज, ना फिर परेशानी माए, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निंद पाई। मन एक बहुत वड्डा महल है, मन एक बहुत वड्डी भूमि है और मन एक बहुत वड्डा पहाड़ है, मन एक बहुत वड्डा सागर है। शायद इसे वास्ते भगत पीपा जी कहंदे ने, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुर होए लखावे। जो तू ब्रह्मंड दे खोजदा रहे हैं, इस तरह दी खोज अपने अंदर भी कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, ब्रह्मंड दी खोज कर करके पदार्थ तेरे हाथ लगे ने, पर जे तू पिंड दी खोज कीती तो परमात्मा तेरे हाथ लगेगा। सागर दे चों तेनू मोती मिले ने, पर मन दे सागर दे चों तेनू ज्ञान मिलेगा। पहाड़ां दे चों तेनू धातुआं मिलियां ने, पर दिल दी खोज करदियां करदियां तेनू शांति सकून मिलेगा, चैन मिलेगा, आनंद मिलेगा। जमीन दे चों तेनू अन्न मिले है, धन मिले है, पर मन दे चों तेनू तृप्ति मिलेगी, रजेवा मिलेगा, तू राजा बन जाएगा, महाराजा बन जाएगा। चंद्रमा तो तू मुट्ठी भर रेत ले आया है, पर जे थोड़ा जिया अंदर जाती मार, मन दे चंद्रमा दे चों तेनू ओ अदुती खजाने लबनगे, कि तू अनंत काल तक माला माल हो जाएगा, सदीवी माला माल, सदीवी चढ़दी कला, सदीवी आनंद। बंदे खोज दिल हर रोज, ये खोज रोज रोज करनी पड़ेगी और उतने चिर तक करनी पड़ेगी जितने चिर तक ये खजाना हथे नहीं आउंदा, ये दौलत हथ नहीं आउंदी। कोई थोड़ा जिया अंतरमुखी होंदा है तो कविता गीत संगीत उसके पल्ले पै जांदा है।
जो कवि है ये थोड़ा जिहा अंतरमुखी होया है। मन दे एक निक्के जिहा कोने दे थोड़ा जिहा इसने प्रवेश कीता है, एक कवि बन गया है। मन दे दूसरे कोने दे किसी ने थोड़ा जिहा प्रवेश कीता है, एक संगीतकार बन गया है, दार्शनिक हो गया है, फिलोसफर हो गया है, चिंतक हो गया है। पर मन इतना महान है और इस दे अंदर जिना जिना ने भी जात मारी है वो ते कहंदे ने कि मन दा पारावार नहीं, अथा दैवी गुणा नाल ए भरे होया है। कहंदे ने पश्चिम दे मनोविज्ञानक ए आखदे ने कि भारती ऋषि मुनि गलत कहंदे ने कि मन विच राम है कतई नहीं, मन विच काम है। भारती ऋषि मुनि जो ये कहंदे ने मन विच अथा खजाने ने, वो कहंदे नहीं मन विच सिवाय कंगालता तो साडे पल्ले होर कुछ नहीं पिया। दरअसल पश्चिम ते पूर्व दा जड़ा मनोविज्ञान है उदे आधार अलग अलग ने। पागल बंदियां नूं आधार बना के पश्चिम दा मनोविज्ञान खोज करदा रहा कि पागल क्यों हो जांदे ने, पागलां नूं आधार बना के ये पागल क्यों हो जांदे ने इस दी खोज ओ मन विचों करदे रहे। पर कोई आनंदित हो गया है, समाधि लीन हो गया है, परम प्रसन्न हो गया है, ऐसा क्यों हो गया है, ये परम आनंदित क्यों हो गया है, ये परम सुख चैन दी दौलत नाल माला माल किस तरह हो गया है। इस तरह दे तंदुरुस्त बंदे नूं आधार बना के भारत दे ऋषि मुनि मन दी खोज कर दे रहे ने। तो एक ने तंदुरुस्त नूं आधार बना के मन दी खोज की थी, एक ने बीमार नूं आधार बना के मन दी खोज की थी, तो फिर खोज दे जमीन आसमान दा अंतरा ते होना सी, ओ होया है। पश्चिम दा मनोचिंतक कहिंदा है मन विच वासना है, मन विच अहंकार है, मन विच लोभ है। जितना गहरे जांदे हां इस तो बिना होर मन विच कुछ भी नहीं है, लोभ ही लोभ है, अहंकार ही अहंकार है और मन काम नाल ही भरे हुए है। आम दृष्टिकोण नाल जे ऐसा देखिए ते कुछ सच्चाई भी प्रतीत आउंदी है कि थोड़ा जिहा मन दे जात मारी है ते अंदर काम है, ते अंदर लोभ है, ते अंदर अहंकार यही फुरने पे चलदे ने। पर ये उपर उपर ने तय दिच नहीं, सता दिच नहीं, लहरां भी सागर दे उपर उपर ने तय दिच नहीं, गहराइयां दिच नहीं, सारी भज दौड़ भी सागर दे उपर उपर है। थल्ले ते सुकून है, शांति है, ठहराव है, एकाग्रता है। सागर दी उछली हुई अवस्था नूं ही तूफान कहंदे ने, मन दी उछली हुई अवस्था नूं ही काम कहंदे ने, मन दी उछली हुई अवस्था नूं ही लोभ कहंदे ने और मन दी उछली हुई अवस्था नूं ही अहंकार कहंदे ने। भगत नामदेव जी महाराज साफ कह रहे ने, लोभ लहर अत नीझर बाजे काया डूबे केसो, ए केसो ए प्रभु, बड़ियां लोभ दियां छल्लां ने, बड़ियां लोभ दियां उचियां उचियां लहरां ने, मैं ते डूब रहा, तू मेहर कर, तू बख्शिश कर, मैनू बचा। तो सागर दी उछली हुई अवस्था नूं तूफान कहंदे ने, मन दी उछली हुई अवस्था ही लोभ है, मन दी उछली हुई अवस्था ही अहंकार है ते काम है। उपर उपर कोई देखेगा इस उछली अवस्था नूं देखेगा तो सिवाय काम सिवाय लोभ ते सिवाय अहंकार तो और कुछ प्राप्त नहीं होना।
तो पश्चिम दा मनोचिंतक ये कहिंदा रहा कि मन दे ते सिवाय काम तो होर कुछ भी नहीं, सिवाय अहंकार तो होर कुछ नहीं। पागल बंदियां नू आधार बना के मन दी खोज कीती जांदी रही है, पागल क्यों हो जांदे ने, तवाजन डावा डोल क्यों हो जांदा है, ये अपना संतुलन क्यों खो बैठते ने। अक्सर काम दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, लोभ दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, और अहंकार दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, ते असीम क्रोध संतुलन खो देंदा है, असीम क्रोध तवाजन डावा डोल कर देंदा है, मनुख नू पागल बना देंदा है। हां जिस तो किधरे काम दी पूर्ति होवे, लोभ दी पूर्ति होवे, अहंकार दी पूर्ति होवे, वो प्यारा लगन लग पैंदा है, उसते मोह आ जांदा है। पर कोई भी हमेशा दी पूर्ति नहीं कर सकता, ये पूर्ति वक्ती होंदी है, आरजी होंदी है। इस वास्ते मोह छिन भंगर हो जांदा है, प्रेम टूट जांदा है, रिश्तियां दे च रोज दराड़ा आउंदियां दिखाई देंदियां ने, मित्रता दुश्मनी दे च बदल जांदी है, भाईचारा खून खराबे च बदल जांदा है, पति पत्नी दे संबंध कल कलेश ते खड़े हो जांदे ने। ऐसा क्यों हर रोज और हर वक्त छिन छिन बंदे दी हंकार दी पूर्ति कोई मनुख हर वक्त नहीं कर सकता, हर वक्त लोभ दी पूर्ति नहीं कीती जा सकती, और कोई भी हर वक्त मनुख दी वासना नु शांत नहीं कर सकता। तो जिथे इनकार, जिथे अतृप्ति, उथे क्रोध, यही असीम क्रोध अगां चल के पागलपन दी शक्ल अख्तियार कर जांदा है। तो पागलां नू आधार बना के फ्राइड ते पश्चिम दे होर मनोचिंतक खोज कर दे रहे, ते ऐलानिया उन्होंने कह दिता मन काम है, मन लोभ है, मन अहंकार है और कुछ भी नहीं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी तो पूछी है, तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते हैं, मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछान, तू ते जोत स्वरूप है, तू ते परम प्रकाश है, तू ते परम आनंद है, तू ते परम खेड़ा है। देखते हैं असि सिपियां संख लहरा सागर दे कंडे ते ने, उपरी सतह ते ने, गहराई दे च मोती पै ने, उपर नहीं मोती मिलते, किनारे ते नहीं मोती मिलते। तो ज्ञान प्रेम समदृष्टि निर्वैरता निर्भयता परम आनंद परम समाधि ये गहराई दे च है। तो गहरे उतरना ही मन दी खोज है, और साहिब कहिंदे ने जो गहरा चला गया मन दी दुनिया च खोजदिया उसनू नौ खजानिया की प्राप्ति हो जाएगी, नौदा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। जिस दिन परमात्मा दा नाम प्राप्त होंदा है, नाम दी दौलत दे नाल ए राजा बन जांदा है, ए महाराजा बन जांदा है। भाई नंद लाल कहिंदे ने, गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो वाजाओ के कज कुलाही नेस्त। हे गुरु गोविंद सिंह, तेरी गली चो जद कोई भूल के भी लंघदा है, वो दो जहाना दी बादशाहत नू ठोकर मार देंदा है, माला माल हो जांदा है, महाराजा बन जांदा है, महाराजियां दा महाराजा बन जांदा है, त्रिपत हो जांदा है। इसे नूं ही गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने ढंग नाल बयान कीता है। आप कहिंदे ने कि कोई मलकियत बारों इतनी जुटा लवे
जितना के सागर दा पानी है जमीन नालों तीन हिस्से सागर ज्यादा है पानी ज्यादा है धरती घट है। इतना वड्डा पसरे होया फैले होया ए सागर और कोई बादशाह होवे सुल्तान होवे इतना वड्डा जितना के पसरे होया है पानी समुंद सहा सुल्तान इसदे घर दौलत कितनी होवे सोना चांदी कितना होवे इसदे घर दे हीरे पन्ने रतन जवाहर लाल कितने होवन गिरहा सेती माल धन जमीन दे उते जितने पहाड़ ने इतना इसदे घर दे सोना होवे चांदी होवे पन्ने ते रतन होवन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो न विसरे ओ कीड़ी जिस दे मन विच प्रभु भुलिया नहीं जो समाधि लीन हो गई है इतना वड्डा बादशाह उस कीड़ी दे समान भी नहीं है उस दे पैरां दी खाक भी नहीं है कीड़ी गिनती मिनती च नहीं आउंदी कई दफा दृष्टि च भी नहीं आउंदी जिस बंदे दी कोई जात नहीं पात नहीं कुल नहीं जिस बंदे दी कोई परिवारिक ताकत नहीं समाजिक शक्ति नहीं आर्थिक ताकत नहीं कुछ भी नहीं हर पासे पछड़े होया है और किसी दी निगाह भी उस ते नहीं पैंदी बिल्कुल कीड़ी दी थल्ले बिल्कुल सारे पैरों दे थल्ले पर सतगुरु कहिंदे जे उस दे हिरदे च किधरे परमात्मा दा नाम वस जाए ओ किधरे अंतरमुखी हो जाए तो इतना वड्डा बादशाह भी उस दे पैरां दी खाक नहीं क्योंकि मलकियत जता के भी जो अंदरों कंगाल है ओनू महाराजा कहना सिर्फ इतना ही है जिवें उपर लेबल लगे होया अंदर तो कुछ भी नहीं है खाली है। तो जैसे कोई मन विच प्रवेश करता है गीत मिलते ने संगीत मिलता है दर्शन मिलता है फिलसफा मिलता है पर ये सब कुछ है थोड़ी जिया गहराई दे है होर अगे जाना है सत्संग दा यही लाभ है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे कोल बैठ के उसनु सुनन दा यही लाभ है कि मनुख होर गहरा जा सके होर गहरा जा सके घबराहट आउंदी है गहराई दे उतरदे हैं। जब थोड़ा कुछ प्राप्त हो जाता है आशा ते बजदी है शौक ते वधदा है पर हिम्मत साहस जुटाना औखा हो जाता है होर गहरे जाइए होर गहरे जाइए। कदी कदी कोई साहस जुटाता है जप करता है और बाणी सुनता है बहुत सुनता है बहुत जप करता है और जैसे अंतरमुखी होके ध्यान नू होर गहराइयां दे चले जाता है तो रिधियां ते सिधियां उसका स्वागत कर दियां ने। पहले गीत संगीत मिलिया दर्शन फिलसफा ए मिलिया हुण रिधियां मिल गईयां हुण सिधियां मिल गईयां हुण ए सिद्ध हो गए ए सिद्ध पुरश हो गए इहदे बोलां विच बरकत आ गई है इहदे हत्थां विच शक्ति आ गई है इहदे कदमां विच क्रांति आ गई है। जिस पासे इसदे कदम जाणगे अपने नक्श चैन छोड़नगे अपने पैरां दे चिन्ह छोड़नगे लोगां लई मार्ग बनेगा। इस दे हथ जिस पासे पसरनगे महान उसारू कम उत्पन्न होणगे उपज होणगे और इस दी दृष्टि जिस ते जाएगी अमृत बरसाएगी इहदे बोलां दे चों महान उसारू बोल जो जीवन नूं बुलंदियां ते लै जाण ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਸਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲ ਮਾਮੂਲੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਪੈਰ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧ ਦੇ
चरण अपने घर पवाईए, क्योंकि पैर आम पैर नहीं ने। इदे हथां तो असीस लईए, इदे हथ आम हथ नहीं, और इदे बोल सुनिए, ए बोल आम बोल नहीं ने, खास बोल ने। हथां नाल, पैरां नाल, बोलां नाल आद काल तो साडे देश दे श्रद्धालु लोग संबंध जोड़ दे रहे ने, उन्हां नाल जो सिद्ध सन, जिन्हां नूं दैवी शक्तियां मन दे अंदरों प्राप्त हो गईयां, पर अजे भी पूरा मन विच उतरिया नहीं गया। हुण होर डुबकी लानी है, तह विच पहुंचना है, जिथे मन दी दुनिया मिट जांदी है, खत्म हो जांदी है, और परमात्मा दी दुनिया शुरू हो जांदी है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जैसे कोई होर अंदर प्रवेश करता है, होर गहराइयां दिच जांदा है, और गहरे जान दा इक्को ही तौर तरीका है, जप। तो समाधि लीन हो जांदा है। सुन समाद अनहद तैनाद, कहन न जाई अचरज बिस्माद। महान बिस्मादी अवस्था उसकी बन जाती है, परम आश्चर्यता प्रकट हो जाती है, और अफुर अवस्था उसकी हो जाती है। तमाम फुरने शांत हो गए, सारी भज दौड़ मिट गई। उस नेचल बिंदु नाल जाके जुड़े है, जिसनू परमात्मा कहंदे ने, जिसनू ईश्वर कहंदे ने, जिसनू परम व्यापक शक्ति कहंदे ने। बस उस तक पहुंचदे आ, इस समाधि लीन हो जांदा है, और ऐसी समाधि जिहड़ी फिर कदी भंग नहीं आउंदी, ऐसा सिंघासन जो कदी कोई खो नहीं सकदा, ऐसी बुलंदी जिस विच मनुख फिर कदी थल्ले नहीं आउंदा, इस तरह दी अवस्था नूं कहंदे ने कि इस नूं समाधि नसीब हो गई है। समाधि तक पहुंचे होया मनुख, उहदी जिंदगी च कोई भी समस्या नहीं, समाधान ही समाधान। जितने चिर तक समस्यावां ने, उन्ने चिर तक समाधि किथे, उतने चिर तक ते चिंतावां ने, चिंतन नहीं है, उतने चिर तक ते कोई ना कोई कामना है, काम है, राम किथे, उतने चिर तक कोई ना कोई छोटी मोटी झलक लोभ दी चलदी रहिंदी है, और कोई ना कोई बिंदु अहंकार दा बनिया रहिंदा है, समस्या। लेकिन इस अवस्था ते पहुंच के, मन दी दुनिया तो पार हो के, कोई समस्या नहीं, समाधि ही समाधि। हुण जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब कबूल। दरिया दे बहाव नाल वो अपने आप नूं बहा लैंदा है, विरोधता नहीं करदा। ऐ दरिया, जिस पासे हुण तू लै जाना है, मैं उसे पासे ही जाना है। आखिर विरोधी दिशा दे तैर के मनुख लंबा नहीं तैर सकेगा, आखिर टूटेगा, थकेगा, और दुनिया दे ऐसा ही हो रहा है। बहाव दे नाल अपने आप नूं बहा लेना, किसे नूं कहंदे ने, रब दी रजा दे इसने अपने आप नूं जोड़ लिया। जिधर रब रजा है, वैण ते दाऊं गाऊं करे। जिस पासे हुण रब दी रजा है, बस उस वास्ते ही, उसे पासे ही जिंदगी नूं तोर दिता है, जिंदगी नूं छोड़ दिता है, ईश्वर दे आसरे ते, प्रभु दे आसरे ते। इस तरह दे बंदे दी जिंदगी च कोई भी समस्या नहीं, समाधि ही समाधि है। मन दी खोज करदिया करदिया गीत संगीत प्राप्त होए, रिधियां सिद्धियां प्राप्त होएगा, खोजदिया खोजदिया मन तो पार होए, तो परमात्मा मिल गया, और जीवन धन धन हो गया। सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन भायो,

द्वापुर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राज अभय भगतें जन दियो।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जां कॉल किरण @604581190।